स्वच्छ भांडे विच लै के आया हां आप दी भेटा विच पातशाह प्रवान करो ते मैं धन हो जावा। हजूर मुस्कराए कहन लगे एदा कपड़ा ते खोल वेखिए तां सही ए किन्ना क सुंदर है किन्ना क स्वच्छ है। इन्हें कपड़ा खोलिया कपड़ा खोल के अगे नू

हजूर कहने लगे, क्यों भाई, क्यों घबराया है, की गल हुई? कहन लगा, सचे पातशाह ये पता नहीं की खेड वरती है, ये शहद विच कीड़े कित्थों आ गए, ते बिल्कुल ताजा है। जदों के एक गल खास ध्यान देने वाली है कि शहद जेड़ा है एक ऐसा पदार्थ है जेड़ा शुद्ध होवे, ओदे विच भावे जिन्ने चिर दा मर्जी रखिया होया होवे कीड़े नहीं पै सकते। पर एथे एक अजीब कौतक वरतिया, एदियां नजरां ने एक वेखिया, ओदे विच कीड़े ही कीड़े पए पए। कहने लगा, सचे पातशाह ये कीड़े कित्थों आ गए? हजूर मुस्कराए, कहने लगे, भाई तू ते कहंदा सी बड़ा निर्मल शहद है, बड़ा स्वच्छ शहद है, पर एदे तां कीड़े भरे पए ने। पसीना आ गया, कंब गया, चरण पकड़ ले, सचे पातशाह इस खेड़ तो मैं अनजान हां, ये किवें पाणा वरतिया? पातशाह बख्श लो। हजूर कहन लगे, गुरमुखा जिस वेले मंगया सी उस वेले ते दिता कोई ना, बड़े तरले पाए, बड़े वास्ते पाए, उस वेले ते दिता कोई ना, हुण की लैण वास्ते आए? जे किते थोड़ा जा शायद ओथे दे दिंदा उस बुजुर्ग नूं तां मैनूं पहुंच जाणा सी। ओ सेवा मेरी सी, किसे लाचार दी सेवा, किसे बेसहारे दी सेवा, ओ मेरी सेवा है, ओ गुरु की सेवा है। ए सेवा इस भावना नाल कीती जावे तां गुरु प्रवान करदा है, क्योंकि गुरु सारी सृष्टि नाल प्यार करदा है, गुरु हर एक जीव नाल प्यार करदा है, ओ ते हर एक नूं जी दान दिंदा है। ऐसा है मेरा सतगुरु जो मनुख मात्र नूं प्रेरणा दे रहे ने, भाई सेवा करके अपना जीवन सफल कर ले, तेरा मन टिक जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले हो जाएंगे।

পাপাং দি তন্দ সাই হয়েছে। কোই কর্ম কাণ্ডা বিচ পিয়া, কোই যোগিয়া দে পিছে পিয়া, কোই সিদ্ধা দে মগর লগিয়া হ্যা। परमेश्वर दा नाम सारियां नू विसर गया सी। पाप विच रुझिया होया संसार, ते जदो अपने बढ़ाए होए संसार दी ए हालत वेखी निरंकार ने, के मेरी बनाई होई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वेष दी अग विच जल रही है, निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया। गुरु नानक दा रूप

अंगूठी पा के जदों खेडन वास्ते बाहर गए ते खेल के जदों घर वापस आए ते हाथ विच मुंदरी कोई नहीं सी। अंगूठी ना वेख के माता तृप्ता जी कहन लगे, नानक हुणे मैं तेरे हाथ

परोपकार जो करन आए सन। कौन नहीं रिया गया माता तृप्ता कोल जाके पिता कालू जी नु आख्या, वेखो सोने दी मुंदरी भी बार दिया है। मैं ता कालू जी कहन लगे, ए जो कुछ मिलता है करो बार वंड आंदा है। आख्या अच्छा इनु किसे कम कारे लाइए, नानक आ कर दियां गाइयां मजी।

कोई गल नहीं, परमेश्वर तेनू होर देवेगा, होर देगा ते। उन्हें आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछो देवेगा, पहला तू मेनू हर जाना दे। साहब जी दी बां

खेत दा मालक जदों राय पुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया, मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां।

बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गई। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी इवे ना आखो मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदो निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है वो कदे डूब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया

पंडित जल दे रहा सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सतसंगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है तुसी जल उस पासे पा रहे हो, तुसी जल उस पासे क्यों पा रहे हो? तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच, मैं उन्हां नूं पानी पा रहा।

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पवोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। सत सिखत बोलो श्री बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारिया सिफरा हन, सिफरा ए सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन

कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरा दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह

कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार से आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच का उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो, एक प्रभु दा सिमरन करो, उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।

सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोहना है। एक गल दा ख्याल रखना मालक दा दर केड़ा है। सो दर केहा सो कर केहा जित दर वसे कवन दर कही है दरा भीतर दर कवन लहे ओ केड़ा दर है जिथे भी साध जन बैठ के।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आया, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदे, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदे। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

उसनु कोई सुनावे कोई कहे। अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनदे हन, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे ने, अंतर जोत राम प्रगासा। जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नु जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नु जानदा है।

तीन बंधा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिमें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिमें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ

जल कहिंदे ने पानी कुंभकड़े समुंदर दे विच अगर कोई पानी दे कड़े नूं डुबो देवे पानी दा कड़ा समुंदर विच समा जांदा इसे तरह कबीर साहब कह रहे हैं जल पीतर कुंभ समाने है मैं अपने परम वहम सारे त्याग दिते अपने आप नूं परमेश्वर दे नाम नाल जोड़िया ते जिस तरह कड़ा समुंदर विच समा जांदा है इसे तरह मेरी भी समाई हुण नाम दे विच हो गई क्यों क्योंकि मैं हुण सारिआं विच एक राम नूं देखदा एक अल्लाह नूं एक वाहिगुरू

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओदी जोत।

तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है, हर इंसान भज रहा है, जिद कोल एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी नहीं, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। बहुते नाटक चेटक देखने विच भी सुख नहीं, सुख नाही बहुत देश कमाए। कई इंसान देखे देसां परदेसां विच भजे फिरदे ने, पर फिर भी सुखी नहीं, सुख उन्हां दे भागां विच फिर भी नहीं। सुख नाही बहुत देश कमाए, फिर सुख किथे? साहब जी कहंदे ने सर्व सुखां हर हर गुण गाए। कदी भी देख लेना जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे, ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो ओ परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जिहड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच समझो ए परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ए परमेश्वर नाल जोड़ रहा है। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे

हजार सूरज होवे, सौ चंद्रमा होवे, पर जे गुरु नहीं मिलिया तां इस चाननी दा क्या फायदा, जे मन दे विच ज्ञान नहीं, मन विच अज्ञान है।

पानी टिक्या रहेगा, जे पानी नो धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह साहब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेडे गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नू जान लैंदे ने कि सारे विच

दोनों जने तानी सेठ दे घर पहुंचे। उस धनी पुरुष ने दोनों भगतां दी सेवा कीती, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं। दोनों भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया पेट कीती। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया, ब्रह्मा छोटा सी।

ओने दोनों पेटावा कठिया कर लिया। घर आके अधी अधी तेरी कर ली। होता कहन लगा ए तेरे वास्ते ठीक नहीं, जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे ने माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा दा चाह, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा। पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनूं भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा, तेरी भी मौत होगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया दोनों दी मौत होई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं। राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कार ऊपर कढ़ निस्तारे। गजपत पार उतारे अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुम ते आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले। और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना की थी, पानी पी के वापस मुड़न लगा
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਪਿਛਾ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ

विष्णु भगवान ने इन्हां दे बंधन कटे, तंदुए नूं भी मुक्त कीता, इस हाथी नूं भी मुक्त कीता, ते दोनों भरा होता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगती करते सन, पर माया का लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नूं इतना दुख भोगना पिया। और जद भगवान मिलिया ते फिर मुक्ति नूं प्राप्त होया। इसे शब्द दे विच धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां दा जिक्र करदे ने कि माया पिछे सराफ दे के दोनों ने जोड़ना पाईया, दुख भोगया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इसे शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ए कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तूं सिख्या लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहिब जी फरमांदे ने, पापां बाजो होवे नहीं मोया साथ ना जाई। पापां तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं हुंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जांदा। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है, अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक बारी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं भी परमेश्वर दी कहानी नूं जान लिया कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है, परमेश्वर दा अमृत दा बगीचा है।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूरन परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

कौ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुरान को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो, काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत, काऊ त्रिगुण अतीत, काहू सरगुण

देत हो, कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो, कतहु विचार अब विचार को विचारत हो, कहूं निज नार

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तां विच घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समां उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी तो उस चाहते का सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हैं। जे कुछ ऊंटाई है तो ध्यान दो ते पूरी करो। आप जितनी वध तो वध जवाना बच्चों पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तो सिखी का मुढ़ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी का धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तो कहा सी कि जिस कौम नु कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तो अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हैं। जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तो मुगल राज का समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण अनुभव किया ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नु हलूना सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड़ के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नु भी ए सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नु सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाय होएगा। फिर लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

अपने आप तो डर लगता है पिया। मेरा रूप विगड़िया होया भयानक है, मुबारक है। जदों बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना, ओ समा मनुख दे बदल जाण वास्ते बड़ा मुबारक है। मनुख दे चंगे बनन दे दिन आए समझ। जिस दिन बंदे नूं अपने अंदर फैले हुए औगण नजर आ जाण, धन गुरु नानक ने उन्हां औगणां ते सट नजर पवाई। कहिंदे मैं वेखदा, भाव धन गुरु नानक दे इस शब्द द्वारा असी वेखना है अपने अंदर, ते देखना है सारा कुछ, बहुत कुछ नजर आ जाएगा जी। सारा कुछ नहीं ते बहुता कुछ नजर आ जाएगा। एक स्वान दो स्वानी नाल, एक तां मेरे अंदर कुत्ता भौंक रहा है, उहदे नाल दो कुत्तियां भौंक रही ने। लोभ कुत्ता, आशा ते तृष्णा उहदे नाल रलियां हुई कुत्तियां। हर अमृत वेले हर दिन चढ़ते पलक पलक लफ्ज जिहड़ा है इहदा, अगर आपां बिल्कुल सही लफ्ज अर्थ वास्ते लभीए, अंग्रेजी चा पट्टू मारो कह सकने। अगला चढ़दा दिन, हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन, जिस वेले मैं भगती दे मार्ग ते तुरना चाहना, मेरे राह विच भौंक भौंक के मैनू ए परेशान कर दे लोभ तृष्णा ते आशा। इन्हां दे भौंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती, पलके भौंके सदा बयाल, बड़िया भयानक आवाजा कट दे। कूड़ छुरा मुठा मुरदार, पुराने समय च कुछ लोग जंगली कबीलिया चो ऐसे भी होंदे सन, जेड़े ना ता लिबास चंगा रखते सन, ना उन्हां दे खान पहनन पीन की मर्यादा सी कोई, ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी। जो मिल गया मार लिया खा लिया, जिन्हू वेखिया लुट लिया। आम तौर ते साडे लोग सासियां नूं भी ऐसा करके जानते रहे ने, हालांकि सासी कौम कुछ होर सी। ए राजपूतां दे ओह लोग सन जिहड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन, पर क्योंकि थां थां फिरदियां होया इन्हां लोकां ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया, इन्हां दी मर्यादा भी खान पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही। ते आम तौर ते समाज विच इन्हां नूं भी उसे निगाह नाल वेख्या जाण लग पिया, जिहड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च बसदे होए सन, जिहड़े किसे समाज नूं किसे इंसानियत दे कानून नूं मनण नूं तैयार ने। गलत खान पीण गलत काम करन वाले ते फिर लोकां नूं लुट्टण मारन, जो कुछ मिल जाए आम तौर ते ओह बिल्ले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लैंदे सन। हुण ओह छुरा भी रखदे सन, तीर भी रखदे सन, हथियार रखदे सन, हालांकि वीरता दीआं निशानियां, शस्त्र कोल होना बहादरी दा निशान है, लेकिन उन्हां वास्ते जिन्हां परोपकार वास्ते वरतना होवे, जिवें तुहानूं महाराज ने बख्शे। ते जिहड़ा पराए बुरे वास्ते किसे दा नुकसान करके किसे नूं तड़फा के जो स्वाद लैण वास्ते हथियार वरते जाण, ते फिर बड़े भयानक हो जाते। महाराज कहिंदे ने मेरे अंदर कूड़ दा छुरा मैं लक नाल बने। हराम खाना, क्योंकि महाराज ने पावन बाणी च बड़ा स्पष्ट किया है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। मुसलमाना वास्ते जिस तरह सूर हराम है, हिंदुआं वास्ते जिस तरह गां दा मास हराम है, इसे तरह किसे दे हक ते निगाह रखनी, किसे दा हक मार के खाना, जिवें इन्हां दोहां कौमां वास्ते इन्हां दो चीजां नूं हराम मनिया गया है, इसे तरह इंसान वास्ते पराया हक हराम है। ते महाराज अगे भी कहिंदे ने, गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए। जे इह हराम दा मुरदार बंदा नहीं खांदा तां गुरु पीर भी बांह फड़दा, ते जे बंदा कहे मैं गुरु का भी बनिया रहा, गुरु की सांझ ही बनी रहे ते मैं हक हलाल की बजाय लोगों का मार मार के खांदा रहा, तां गुरु वालों हामी भरे जाने की कोई गुंजाइश नहीं। महाराज कहिंदे ने इस तरीके दे नाल मेरे अंदर हक पराए की निगाह जिहड़ी है वह एक मुरदार खाण वाली गंदी वृत्ति। इस तरह मैं बड़ा मारखोरा भयानक रूप लैके फिर रहा।
मैं पत की पंध मेनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी की कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मेनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं एहा आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोकां दे औगण कढ के ए सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजियां दे औगण कढदा रहे अपने औगणां ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणां ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवे धन गुरु हराय साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार च आप जानदे हो साहिबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिली ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਪਣ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਉਂਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕ ਜਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਮਲਮਾ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਹੜ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਗੰਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਤ ਕੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ ਹੋ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एह आस एह आधार मुख निंदा आखां दिन रात इस मूह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदिया जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दीआं बुराईआं कढ़ीआं पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान दे लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल वेखे लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखने वड़ियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बने काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर दे बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ए लोभ दे वस हो काम दे वस हो क्रोध दे वस हो ए खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह कराउंदियां ने साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि ओ ता लोक जिन्हां दी गल महाराज ने जिक्र कीता इत्थे ओ लोक ता बाहरों भी गंदे रहिंदे सन सफाई बाहरले जीवन दी भी नहीं रखदे बाहरों भी मर्यादा नहीं रखदे पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संता वाला वेश धारण कर ले साहब कहिंदे ने ऐसा भी हो जाए फाही सुरत दिमाग विच आया है कि मैं लोकां नूं फसावां किस तरह लोक फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोकां नूं किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेश बाहरों मेरा नेक इंसानां वाला साधा वाला फकीरां वाला वेश है हौ ठगवाड़ा ठगी देश मैं ठग लोकां नूं ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बनदा भी बहुता मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरिया रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर ओहदा भी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आप खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उसनू हराम खोर कहिंदा जेड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उसनू प्राप्त है ओदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरिया दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरिया बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवे मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक दा यह शब्द साहिबा दी यह बाणी सानू अपने अंदर झाट पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नूं जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जागता है। गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।